जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा, सतनाम वाहे गुरु साहेब जीओ,

जो दिसे सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त हो जिन जपया तिसकौ बल्लेहार तिसकै संग तरै संसार कहो नानक लोचा पूरा संत जना की बाचौ तूरा जिन जपया तिस कहो बलिहार संग तरह संसार कहु नानक प्रभ लोचा पूर।

कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनु गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते तुदनु गावन से मैं चतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाय है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जनु पाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म न करना लाई सो पातशाह साहब पत साहिब नानक रहण रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब को एके वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहे जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तब सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि कनै ना पाईया कर्म मिलै ना ही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू देह तसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा वासा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूखत भूखै खाए चलिए दूख सो क्यों विसराय मेरी माए साचा साहिब साचा नाय राव साचे नाम की तिल वड़े आई आख के कीमत नहीं पाए जे सब

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अकाल मूरत अजुन्नी सभं प्रसाद तेरी पनह खुदाए ओम बख्शंदगी शेख फरीद

0: महाराज जी प्रसन्न होए उन्होंने ते महाराज ने बचन कहे भी तुसी अपनी इच्छा दसो किस वास्ते आए जे।
1: आसा धरे दूर ते आए पूरन करो न गुप्ती राख।
0: तुसी अपने मन की आसा जिहड़ी आ ओ प्रगट करो तुसी दूर तो आए जे काशी तो आए जे।
1: दौन सहोदर तब कर जोरे परम प्रेम कर बिनती भाख।
0: दोवां भरावां ने हथ जोड़े ते बेनतियां कीतियां बड़े प्यार वे श्रद्धा भावना च।
1: दर्शन ते कारज भे पूरन नहीं रही क्यों हूं और कांख।
0: महाराज जी तुहाडा दर्शन करके इच्छा पूरी हो गई आ। कोई किसी चीज मंगण दी इच्छा ही नहीं रही।
1: अपनो सिद्क सदा उर देवो जगत को बंधन सर्ब मिटाए।
0: अपना सिद्क बख्शो महाराज जगत दे बंधना तो बचाउणा करो।
1: चरण आपके मन में बस है निस दिन सिमर है हर गुण गाए।
0: तुहाडे चरण साडे हिरदे च वसण तहीं दिने रात आपदे गुणा नूं गाउणा करिए।
1: सुनत सतगुरु कहो तथास्तु बर को पाए रहे हर खाए।
0: महाराज ने तथा अस्त कहता। तथा अस्त का भाव हुंदा इसे तरह ही होवेगा जो तुहाडे मन की इच्छा वह पूरी होवेगी।
1: केतक दिन बस कर अमृतसर होए पुन विदा गए निज थाए।
0: कोई दिन अमृतसर है हरी मंदिर का दर्शन करते रहे सलोवर का इनान करते रहे महाराज की गुरबाणी सुनते रहे गुरबाणी का कीर्तन सुनते रहे महाराज का दर्शन करते रहे फिर महाराज तो आग्या लैके विदा होए अपने काशीपुरी नूं चले गए।

देव माता, गुरु जी यू आर माई मदर, गुरुदेव पिता यू आर माई फादर, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, वाहिगुरु जी यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल। दिस ब्यूटिफुल शब्द इज बाय तन साहिब श्री वैकुंठ देव जी महाराज। महाराज जी टेल्स अस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिलेशनशिप दैट यू कैन थिंक ऑफ, महाराज इज पुट इनटू द शब्द। Projectors are above us here. कोई ऐसा पुरानी ना रहे जिहड़ा शब्द दे ट्रांसलेशन ना पढ़ी होवे। जिहड़े पुरातन गुरसिख ने बाणी नित्रे वाले वह हमेशा ही आप ही जानते हो यह जिहड़ा श्लोक है ये आप पढ़ना कहते हैं कि अंत दे विच पहले शुरुआत दे विच ते अंत दे विच हमेशा ही अपने नित्रे दे विच इहनूं इंटरप्रेट करते हैं। तो क्यों करते हैं इस तरह देखो

सर्विस टोटल बाथ राग है कत्ती कल्ले कल्ले और कत्ती जड़े दो दो हैं जिधर भी चो तेरा तो गौड़िया हम गौड़ी चेती गौड़ी गारेरी गौड़ी मार उन्ना भी चो ये राग है सूही ललित सादा दी बंदिश है आप भी बड़े प्यार ना सरवन करो शब्दे पाप अर्थ भी बहुत कमाल है सुर एकाग्र करके क्योंकि बाणी दी कथा करन कीर्तन विच लोड़ नहीं अगर ध्यान नाल शब्द नूं समझण दी कोशिश करांगे ते भाव आपे समझ लग जांदे हैं सो गुरु सर कृपा कर मनोवृत्तियां एकाग्र करके नाल गायन करन दा उपराला करो सतगुरु रहमत करो।

हम आप गुण भरी एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखा बिखकाई माया मोह परम कै भूले सुत दारा सुमीत लगाई एक उत्तम पंथा सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू शरणाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

करुणालय हैं, रकाली हैं, कलखंडन हैं, महामंडन हैं, जगदीश्वर हैं, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व बारण है, त्रित की तरण है, जाग की करण है, मनमानीय है, जगजानीय है, सर्वंबर है, सर्वंकर है, सर्वासी हैं, सर्वनाशी हैं, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, ब्रह्मंड सह, खलखंड सह, परते पर है, करुणा कर है,

सदायंग संगीयाभंगं विभूति त्वा प्रसासवये एक ओंकार सर्गुण प्रसाद आर्षाही दसमी त्वा प्रसाद सवये श्रावक शुद्ध समूह सदान के देव रेव करजु जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुदार का सं समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मर को न देखिए पा पति के श्री भगवान के पाए कृपा होंदे एक रति मन एक रति के माते मतंग जरे जर संगानुप तंग सुरंग सवारे कोट तरंग कुरंग सिख दत्ता पौन के कौन को जातन वारी पारी जान के भू बली बेनाम शीस न जात विचारे इते पैतौ काम भूपता अंत को नंगे ही पाए पदारे जीत भरा सब दे दसान को बाजत ठूल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपता कौन गनी नी जात विचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के दाम सजारे तीर्थ नाम दया दमदान सुर संयम निमाने कम सिखा भेद पुराण देव पुराण जमीन जमान सुबान के बेखा पौन हार जति जाता सभा सुभ चार हजार कलिखा श्री भगवान भजे बिन भूमता एक रति बन एक न लेखा शुद्ध से पाद नंद बासु सा सुनंदर जान दलेंगे भारी कमान परे मन मैं कर बरबत पंखा ले न हलेंगे तूरा रीन मरूर मवासन माते मदंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्यार जहान निदान चलेंगे वीरा पार बने मरियार बचार सार की धार बशैया तूर तदेश मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहेबा श्री सब को शरणायक जाज गणेक सुवेक दवैया दानव देव निंदे साचर पूर्ण भविक भमान जबेंगे जीव जीव जिते जाल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब था थपेंगे पन भरता पन बाढ़ जय तन पापन गे पापन खपेंगे सार समूह प्रसन्न भरा जाग शत्र सबाय अवलो छपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नरातब जौन तरड़ो को राज करेंगे कोट शनान गजाद गदाना ने स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पात अंध फसैजम भा भरेंगे जी नर श्री पर के प्रसह भगते नर हर नांदी धरेंगे कहाँ भयो जा दो लोचन मुंद का बैठ रे भगत्यान लगायो नात फिरे लिये सा समुंदर लो गयो परलो गवायो बास की बिखियान सु बैठ कै ऐसे ही ऐसे सु बैस बतायो साच कहूँ सुन लेहो सब जिन प्रेम किया तनी प्रपायो काहू ल पाहन भूतरियो सिर काहू लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हरवाची दसा मैं काहू बशांको सीसन वायो को बतान को पूजत है पशकू मृतान को पूजनतायो पूर क्रिया

निरलंब आदन लाद संबता का मूड चार तबीदा जाकू भीम न बाप तबीदा ता कौ कर पाहन अनुमानत महामूड का बीदन जान महादेव को कैद सदा सेव निरंकार का चींत न बेवा आपे अपनी बुद्ध है जीती बरणा भिन्न भिन्न द्वेती तुमरा लखा न जाए बसारा केह बेद सजा प्रथम संसारा एकै रूपानु सरूपा रंग भयो राव कहीं बुबा अंडा जीर जसे तजकीनी अतबर खान बहुर राजदीनी कहूँ फूल राजा में बैठा कहूँ सेवन पै संगर कैठा सिगरी सिंह दिखाए चंबावा जुगा स्वरूप स्वंबव अवरषा मेरी तुम करो सिखी उबार आ सिख संगरु दुष्ट जते उठ उत्पाता सगल मलेश करु रनकाता जी आ तुम तव शरणी बारे तनके दुष्ट दुख दह

चौबाई संबत सत्र सहस वणिज अर्ध सह मुदीन गहिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रवाराती सत्र द्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कु आंग तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वीर सब भीत कह हम एक न जान्यो श्री सुभान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दूर।

0: नानक सुत के न उतरे ज्ञान उतारे तोहे महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूड़ अखी सुतक वेखना परतरै पर धन रूप।

देखा कि तापन दर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सबको ही आई बारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साई मनो बिसारी है।

आपे भांडे सजन आपे पूरन दे एक नी दुध समाई चुले रहने एक ने हाली पैसा।

परम सम्मान योग जुगो हो जुग अटल चवर छतर तख्तां दे मालक सतगुरु दसाहा पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जीओ अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना दे अंदर जुड़ बैठ के सतगुरु जी दी महान बख्शिश कृपालता दा सदका आसा की वार दे कीर्तन सत्कार जो कीर्तनियां पासों आप सरबत साध संगत जी ने सरवण कीते हन तन सुवेला कड़ी तन तन मूर्त पलसार तन सो दिनस संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार ओ समा पल कड़ियां सफले हन जड़े सतगुरां दी पावन चरण शरण दे विच जुड़ बैठ के अमृत गुरबाणी नूं गाउंदिआं सुणदिआं बतीत हुंदे ने ओ समा सफला है ओ जीवन भी सफला है जिहड़ा परमेश्वर दी याद दे विच बतीत होवे। अज अमृत वेले जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं ने प्रकाशमान हुंदिआं पावन पवित्र मुख वाक हुक्मनामे दी बख्शिश कीती है नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे मुखारबिंद तों चारण होए पावन अमृत बचन सोरठ राग दे विच पावन अंग 631 तों आरंभ हो के 632 तक सुशोभित हन। अज दे इस महान मुख वाक दे अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कृपा कीती और एक खास बात सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे शब्दां दे अंदर अरमता वाला बंद और रहाओ दा बंद है। करीबन सारे शब्दां दे अंदर अरमता वाले बंद और रहाओ दे बंद ने शब्द दा मुख भाव